विश्लेषण मनोरंजन साहित्य और कला संस्कृति पर्यटन और विकास कला की जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: जस्तो छैन यार।
1: शहर में भीड़ सब मानसे अकेला, टेंशन गर्मी ठेलम ठेला, हर कोई जिंदगी से धकेला, सानो पात मा ठूलो समेला।